0: विचार तितो पनि मिठो पनि, विषय राजनीतिक पनि गैर राजनीतिक पनि, अतिथि परिचित पनि अपरिचित पनि, र सरोकार सीधा तपाईसँग, प्रत्यक्ष पनि अप्रत्यक्ष पनि। द न्यूज प्लस, द न्यूज प्लस रेडियो थाह संचार 99.4 सहित थाह संचार नेटवर्क का पार्टनर स्टेशनहरूबाट एकै साथ प्रत्येक दिन बिहान 6:30 बजे निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाह संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: द न्यूज प्लस।